0: जाने वाली गाड़ी 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी. योर अटेंशन प्लीज. डाउन सियालदा बजबज लोकल फॉर बजबज विल अराइव ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2.
1: Lake Gardens, train station.